वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू।

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाक।

0: है बुरा ना मनायो, मैं पहले ही माफी मांग लेना क्योंकि लाइव चलता हों, नहीं तो कई बंदे थोड़ी जी क्लिप कट के वह पा छड़दे ने। की कारण है? जिसनों सब तो उत्तम बनाया उसी दे वास्ते सब तो ज्यादा प्रचार। गल ए है आप अपने वालों कुछ भी नहीं कहना, आप गुरु की पावन बाणी की गल करनी है। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करें दिन रात। कई शरीर मनुखां वाले ने पर जदों उन्हां दी करतूतता देखिए ते पशुआं तो भी बदतर ने, पशुआं तो भी। ऐसे करके प्रचार हुंदा भी किते वाहिगुरु जी ने इंसान बनाया किते इहदे अंदर इंसानियत भर जावे। गुरु का ज्ञान सुन के इस दे अंदर इंसानियत पैदा हो जाए। कई दी इंसानियत मर जाती है, जिस दी इंसानियत मर गई वो इंसान थोड़ा ही रह गया, फिर वो तो हैवान हो गया, इंसान वाले काम नहीं करता। जेडे पाप कमाते ने उन्हां दे अंदर इंसानियत है? नहीं। इंसानियत होंगी तो वह पाप क्यों कमा, वो दूजे का बुरा क्यों लोचन, वो दूजे का बुरा क्यों करन, क्यों इन्ने पाप कमाउन। इसी करके कि अंदर उन्हां दी इंसानियत खत्म हो गई। इस करके इन्ना प्रचार इस मनुख दे वास्ते हुंदा है भी किते इहदे अंदर मनुखता आ जावे। सतगुरु जी कृपा करन साडा भी सारिआं दा मन नीवा हो जावे ते मत उच्ची हो जावे, फिर जीवन का सही रस्ता मिलता है। फिर जिंदगी देखो थोड़े दिन देख, मैं कहता शुरुआत करके देखो एक बार। सच जानियो साध संगत जी, सच दे राह ते थोड़ा जिहा चल के देखो एक बार, यह जीवन किन्ना सुखमई हो जाता, किन्ना सौखा ते सुखमई बन जाता है। एक बार थोड़ा जिहा चल के देखो सच दे राह ते, जीवन का पता ही असल विच आनंद ही तां आउंदा जदों बंदा सच दे राह ते तुरे। बड़ा आनंद आउंदा फिर जीण दा, फिर बंदा कहिंदे भी मनुखा जन्म बहुत सोहना है। नहीं तां सच जाणियो बहुतां वास्ते तां यही मनुखा जन्म जिहड़ा इन्ना सोहना जन्म है यही नरक बन जांदा। वाहिगुरु कृपा करे सारिआं दा मन इह मांझिआ जावे, सेवा सिमरन करके इस मन नूं मांझण दा जतन करिए, बस ये मन काबू आ जावे। कुंभे बद्दा जल रहै, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्दा मन रहै, गुर बिन ज्ञान ना होए। बस अपने गुरु चरणा च अरदास करते रहिए, सतगुरु सच्चे पातशाह साडा ये मन बड़ा चंचल है, बस तुसी ज्ञान बख्श दिओ ये मन काबू आ जावे, फिर ये लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले भुला चुकां दी खिमांग जाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: गुरु प्यारी साध संगत जी, शाम दे सजे हुए दीवान विच आप संगतां नूं लड़ीवार कथा गुरमत विचारां सरवण करवा रहे सन। सत्कारयोग ज्ञानी अगंत सिंह जी, ज्ञानी जी हुणां दा बहुत बहुत धन्नवाद। आओ हुण आप संगतां नूं कीर्तन नाल जोड़ रहे हन सत्कारयोग रागी भाई गुरमेल सिंह जी, श्री दरबार साहब वाले अते उहनां दा रागी जत्था। सो नाल ही आप संगतां नूं बेनती है जो कि पंचम पातशाह साहब श्री गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज उन्हां दे शहीदी पुरब मनाउंदिआं होइआं ਅਤੇ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿਖੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜੋ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 6 ਜੂਨ ਦਿਨ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਆਰੰਭ ਹਨ। ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਰੌਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਓ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नाम सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिह रिठे शब्द खजाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दयावें ताए सब थाई हुए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजा प्यारियां चौहान साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अमडिठ कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। जिन्हां सिंह सिंघणियां ने धर्म हे सीह दिते बंद बंद कटवाए खोपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े तनारिया नाल चरवाए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी सिदके सवासा संग निभाया तिना समूह शहीदां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारिया जी का ध्यान तरके बोलना जी। प्रिथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावै चेतावन का सदका सर्ब सुख होए जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छया रियायत देग तेग फते बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलना जी। सिखा नु सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान विसाह दान प्रसाद दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार होवे बोलना जी। सिखा दा माननी वाह मत उची मत पद दे राखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जी ओ श्री ननकाणा साहिब समूह गुरधामा दे खुले दर्शन दीदार सेवा संभालता दा दान प्यारे खालसा जी नू बख्शो निमाणिया दे माम ने ताणिया दे ताम ने ओटिया दी ओड़ने आसरिया दे आसरा धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ आप जी दे हजूर उदास बेनती आप दियां ने कृपा रहमत कीती आप दी पावन हजूरी विच शाम दे सुंदर दीवान सजे हान सजे हुए दीवाना विच गुरबाणी दी लड़ीवार कथा विचार गुरमुख विचारां गुरबाणी दे कीर्तन छे पौड़ियां आनंद साहिब दा जाप होया है कृपा करनी पातशाह जीओ समुचियां सेवावां निभाउंदियां होया पुल चुग दी खिमा बख्शना पढ़ी सुनी बाणी कथा कीर्तन दा भाव आईया संगतां दे हिरदे ते वसाउणा सब दियां दर हाजरियां तिल फुल पेटावां प्रवान करनियां धरों घरों नाम दान चढ़दी कला दी दात बख्शनी परिवारां विच सुख शांति कारोबारां विच वाधे करने जेलां विच बंद गुरसिखां दी रिहाई चढ़दी कला करनी अपने प्यारे खालसा पंथ दी चढ़दी कला करनी बख्शां खजानिया विचों कड़ा प्रसाद दी देग सज के हाजर है करी पाक साल सोज पवित्रा हुन लाभ भोग हराए आप जी दा सीत प्रसाद जो छके नाम वाहिगुरु वाहिगुरु जपे श्री मुख वाग दी बख्श करो से ही प्यारे मेल जिना मिले आम जिया दा नाम चितावे।

गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु

गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु।

गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय

अलग भेद उपाए। हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन चौंकुंठ जाते। हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन कियो सगले आकारा, हर सिमरन में आप निरंकारा। कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन दिन पाया। सलोक दीन दर दुख भंजना, कटकटनाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो। नानक के प्रभु साथ अष्टपदी, जय मात पिता सुत मीत ना पाई। मन ऊहा नाम तेरा संग सहाय, जय महाप्यान दूत जम दलाय। तह केवल नाम संग तेरे चलै, जय मुश्किल होवे अत भारी। हर को नाम खिन माहे उदारी, अनक पुनः चरण करत नहीं। तर हर को नाम कोट पाप पर हरै, गुरमुख नाम जपो मन मेरे। नानक पावो सुख नेरे, सगल सृष्ट को राजा दुखिया। हर का नाम जपत होए सुखिया, लाख करोरी बंद ना पर। हर का नाम जपत निस्तर, अनक माया रंग तिखना बुझावे। हर का नाम जपत आघावे, जे मार्ग ए जात अकेला। तै हर नाम संग होत सुहिला, ऐसा नामन सदा त्याइय। नानक गुरमुख परमगत पाइय, छूटत नहीं कोट लखबाही। नाम जपत पार पराही, अनक बिघन जाए संगारे। हर का नाम तत्काल उदारे,

जन कोट हर जस करत संदिन रात हर आउ खद साध कमात हर जन के हर नाम निदान पार ब्रह्म जन किन्नो दान मन तन रंग रते रंग एका नानक जन के बिरत विवेका हर का नाम जन को मुक्त जुग तर के नाम जन को त्रिवत भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जब तक का परे न भंग हर का नाम जन की वडियाई हर के नाम जन शोभा पाई।

सुन समाध नामर समाते आठ पहर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं शपै हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संकेत तरे पार जाते हर को नाम काव देन हर हर गुण गाम सबते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर दुख लत्था नाम की महिमा संतरद बसा संत प्रताप दुर्द सब नसै संत का संग बटभागी पाइय संत की सेवा नाम ते आइय नाम तुलक शबर न हुए नानक गुरमुख नाम पावै जन को ए सलोक बहु शास्त्र बहु से मृति पेखे सर्ब टडोल पूज सनाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान गढ़ शास्त्र से मृत बखियान योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग मनबद्धे फिरिया अनक प्रकार किए बहु जतना बहु नदान हमें बहु रतना

परान छोड़ जाए दुसगा श्रम कर संग सहाय दस पर हर चंदन ले उतारे तो हे घर द प्रीत पसम संग होए अंत गुप मैं पातत बेकरार नानक काल ड्यो प्रभु दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर पेखन तरमल माया छपस नाय कश करे छपाया बाहर ज्ञान ध्यान इशनान अंतर व्यापे लोभ सुमान अंतर अगन बार्तन स्वागल पात्र कैसे तरे यथा जाके अंदर बसे प्रभ आप नानक ते जन सहज समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावे कर गए लेह ओढ़ निबहावे कहा बुझारत बुझे डोरा निस्कै तो समझे पूरा कहा बिसन बद गावे गुंग जतन करे तो भी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर भव नहीं हो तू हावस गवन करता करुणा मैं दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तराय संग साई सो आवे ना चीत जो बैराई तास्यो प्रीत बलवा के ग्रह पीतर बसाय अंत खेल माया रंग रसा दृढ़कर माने मने प्रतीत काल ना आवे मुड़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ बिकार महा लोभ त्रोई आहू जुगत बेहाने कई जन्म नानक राख ले वापन कर कर्म तू ठाकुर तुम पह अरदास जियो बिन सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा मैं सूख नेरे कोई ना जाने तुमरा अंत उचे ते ऊंचा भगवंत सगल समग्री तुमरा सूत्र धारी तुम ते हुए स्व आज्ञाकारी तुमरी गद में तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी सलोक दीन हार प्रभ छोड़ के लागे आन सुभाए नानक कहू ना सी जाई बिन नामे पथ जाए अष्टपदी दस वस्तुले पाछे पावे एक वस्त कान भी खोट गवावे एक भी ना दे दस भी हेर ले तो मूढ़ा कहो कहा करे जिस ठाकुर से नाही चारा ताको कीजे सद नमस्कारा जाके मन लागा ब्रह मीठा सर्व सुख ताहू मन उठा

जिसकी बस आज्ञा राखे प्रभु की आज्ञा माने माथे उसते चौगन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनक भांत माया के हेत सर्वरोह बद जान अनेत बिरकी छाया शिवरंग लाभे अभिन से मन पछतावे जो दिसे सो चालन हाल लपट्यो ते अंध अंधार बटाऊ स्यो जो लावे ने ताकु हाथ न आवे के हे मन हर के राम की प्री सुखदाई कर कृपा नानका बिलाय लाई मिथ्या धन धन मिथ्या धन धन कुटम सबाया मिथ्या होवे ममता माया मिथ्या राजन धन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती आसु वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया बेखस्ता मिथ्या त्रोह मो अभिमान मिथ्या आप सुप्र कर तुगमान अस्थिर भगत साधु की शरण नानक जब जब जीव हर के चरण मिथ्या सर्वन पर निंदा सुनह मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिरे मिथ्या रे दर्पेखत पर त्रैरुपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर बिगार गोतावे मिथ्या मन पर लोभ लुभा मिथ्या तर नहीं पर बुकारा मिथ्या बास लेद बेकारा बिन बुझे मिथ्या सब भय सफल दे नानक हर हर नाम लहे बिरथी सागत की आरजा साज बना के हो बल सुचा बिरथा नाम बिना धन अंध मुखा बताके दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बेहाय मेघ बिना जो खेती जाए गोबिंद भजन बिन बिरथे सब काम जो किरपन के निरार धाम धन धन तेजन जेह घट बस्यो हर नाहो नानक ताके बल बल जाओ राह तवर कश्यप कमावत मन नहीं प्रीत मुखो गंड लावत जानन हार प्रभु प्रवीन बाहर भेख ना काहू भीन प्रभदेसे आब ना करे आबत जाबत जन्मा मरा

परमेश्वर ब्रह्मज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्मज्ञानी का सकल मन माहे, ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्मज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्मज्ञानी

सदा अनंत नहीं वियोग, तैसा स्वर्ण तैसी सुमाटी, तैसा मृत तैसी बिखाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो बरताए साई जुगत, नानको पुर कहिए जीवन मुगत, पार ब्रह्म के सगले ठाऊं, जिस जित कर राखे तैसा तिन नाहू, अपे करन करामन जोग, प्रभावे सुइफन होग, पसरिया वे आनंद तरंग लखे ना जाहे, पार ब्रह्म के रंग जैसी मादे तैसा प्रकाश,

अष्टपदे कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट भय तीर्थवासी, कई कोट मान पर मैं उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान धारे, कई कोट कबका बिचारे, कई कोट लभत नाम त्यावे, नानक करते कंत न पावे, कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अभिगातम निखोर, कई कोट पर दर्भ को हिरे, कई कोट पर दुख ना करे, कई कोट माया सरम माहे, कई कोट पर देश परमाहे, जित जित लाभो तित तित लगना, नान करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्व उपाय, कई कोट पाथर बृख ने बजाए, कई कोट पवन पाणी बह संतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट ससियर सूर न खेत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सेर शतर सगल समग्री अपना सूतार, नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार, कई कोट राजस्थान साध, कई कोट वेद प्राण सिमरतर शास्त्र, कई कोट किए रतन समुद, कई कोट नाना प्रकार जंद, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे, कई कोट जख किन्नर पिशाच, कई कोट भूत प्रे सुगर मिरगाज, सबते नेरा सब हूं ते दूर, नानक अबल आप अलिप तरिया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुरग निवासी, कई कोट जन्मे जीवे मरे, कई कोट बहु जूनी फिरे, कई कोट बैठत ही खाए, कई कोट गाले थक पाहे, कई कोट किए धर्मंत, कई कोट माया मैं चिंत, जय जय भाणा तै तय राखे नानक, सब किश प्रभ कै हाथे, कई कोट भय भै रागी, राम नाम संग तिल निभ लागी, कई कोट प्रभ को खो जनते आत्म में पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिनको मिल्यो प्रभ अविनाश, कई कोट मांगे सात संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको आप सुप्रसन्न नानक, ते जन सदा धन धन, कई कोट खाणी अर खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट हो अवतार, कई जुगत किन्नो बस्थार, कई बार पसरियो पासार, सदा सदा एक एक अंकार, कई कोट किन्ने बापान प्रभ ते प्रमाहे समाता, कांत ना जाने को आप आप नानक प्रभ सुए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन हो तातम प्रकाश, कई कोट तत् के बेते सदा निहारे को नेत्रे, कई कोट नाम रस पीमे अमर पाए स्वसादी जीवे, कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस सुख सह समावे, अपने जन को सा सा समारे नानको परमेश्वर के प्यारे सलोक, कर्ण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोय, नानक दुस बलिहारण जर थल मही अर सोहे, अष्टपदी।

राष्ट्रपति संत के दुखन यार जा घट है, संत के दुखन जमते नहीं छुट है, संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन मत होए मरीन, संत के दुखन सो बाते हीन, संत के हाथे को रखे ना कोए, संत के दुखन थान भ्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जय करे नानक, संत संग नंदक भी तरह, संत के दुखन दे मुख पावे, संतन के दुखन काग जो लवे, संतन के दुखन सर्व जोन पाए, संत के दुखन त्रिगत जोन किरमाए, संतन के दुखन तृष्णा में जले, संत के दुखन सब को शलाए, संत के दुखन ते सब जाए, संत के दुखन नीच निचाए, संत दुखी का ना थाऊं को राहे, नानक संत पावे ता वे भीगत पाए, संत का नंदक मात ताई, संत का नंदक इंट करना पाए, संत का नंदक महाध्यारा, संत का नंदक परमेश्वर महाराज,

धन कह सब गो हे मुख उजल हर दरगे सोए ए वाह बार बिरला वाह पारे नानक ताके सद बलिहारे चरण साध गए धोए धोए फिर अब साध अर्प साधु को अपना जियो साधु की धूर करो इशनान साधु पर जाइये कुरबान साध सेवा बटभागी पाइये साध संघ हर कीर्तन गाइये अनक बिगंते साधु राखे हर गुण गाये अमृत रस चाखे ओट गही संते दर आया सर्व सुख नानक ते पाया मृतक को जी बालन हर भूखे को देवत आधार सर्व निधान जाके दृष्टि बाहे प्रभु लिखे का लहना पाहे सब की तस्का हो करने जोग तस्मिन दूसर हुआ ना हो जब जन सदा सदा दिन रैणी सब ते ऊच निर्मल एक

के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे पुरिया सब भमन नाम के संगद्रे सुन श्रवन कर कृपा सबने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन गत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान सत करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख सब माहे समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पात सत करणी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तसे सब भली सत नाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नान गुरते पाई सत भजन साधु उपदेश सत्य जन जा कै हृदय प्रवेश सत नृत बुझे जय कोय नाम जबता की गत हुए आप सत किया सब साथे आपे जाने अपनिमित गत जिसकी सिठ सो करने हार वरना बूझ करत विचार करते कीमित ना जाने किया नानक ज्योत भावे सो बरतिया बिस्मर बिस्म भय बिस्माद जन बुझा आया स्वाद प्रभु के रंग राजन रहे गुरु के भजन पदार्थ लहे वे दाते दुख काटन हार जाके संग तरा संसार जन का सेवक सोबट भागी जन के संग एक लिबलागी

दर्शुख मान मेघसा साधु चरण तुय भक्त जनागे मंत्रंग विरला गौ पावे संग एक भस्त दिजय कर मया गुर प्रसाद नाम जपलया ताकि उमा कही न जाय नानक रया सर्व समाय प्रभक्त शांत दीन दयाल भगत वशल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल सर्व घटा करत परत पाद आदि पुर कारण करतार भगत जनागे प्राण आधार जो जो जपे सोए पुनीत भगत पाए लाभे मन हीत हम निर्गुनी यार नीच अजान नानक तुमरी सरन पुरख भगवान सर्वकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हरके गुण गाय अनक राज भोग बड़ियाई हरके नाम की कथा मन पाए बहु भजन गा पर संगीत रसना जपती हर हर नीत भली सो करनी शोभा तन मंदिर दे बसे पूर्ण गुरमंत सा संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक प्रकाश सलोक सारगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानक आपे ही फिर जाप अष्टपदी जब कार्य काशना दृष्टि तप आपन तप कहते होता जब तारी अपन सुन समाद तब ऐर विरोध के संकमा जब इसका वर्ण चेहना जाप तब हर सो कहो किसे व्यापत जब अपने आप आपार ब्रह्मता मोहगा सुबत परमापन खेला भरतीजा नानक करने हर न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनिता बंद मुगत कहो किसको गनी जब एक हर अगम अपार तब नर्क सुर कहो कौन आओ तार जब निर्गुण प्रभ सह सुभाय तब शिव शगत कहो गित ठाए जब यापे आप अपनी ज्योतर तब गमन ने डर गमन का तो डर आपन चलता करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख अपने आसन तय जन्म मरण कहो कह बिनासन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो कि सोए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चेतर गुप्त किस

तो ताता अपने मेल कहा हो क्या तोता। जय निरंजन निरंकार निर्वाणता कौन को मान कौन अभिमान जा स्वरूप केवल जगदीशता छाल छिद्र लगत कौ कीस। जय जो स्वरूपी जो संग समाप्त किसे भूकम द्रवताप करण ग्राम करने हार नानक करते का नाहे सुमार। जब अपनी शोभा अपन संग मनाए तब गमन माए बाप मित्र सुत पाई जय सर्व कलापे प्रवीण तय वेद गतेब कह कौ चीन। जब अपने आप आप उतारे तो सगन आप सगन कहाँ बिचारे जय अपनु जब ना बनेरा तय कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा। बिस्मन बिस्मरे बिस्माद नानक अपनी गत जानू आप जा छल अशेद अभे समाया मुहां किसे व्यापत माया।

पापं ते पैकहावत कौ नरको स्वर्गवंशावतार जाल माया जंजाल होमे मो परम पैपार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बखियान अपन खेल आप कर देखे खेल संकोच है तौ नानक एका जावगत भगत आप ज पसरे पासार संत प्रताप दुहु पाका आपे धनी उनकी शोभा उन्हों बनी।

अष्टपति पूरे गुरुगा सुनपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सासा सिमरो गोबिंद मन अंतर की उदरा चिंद आस अनित्यागो त्रंग संजना की तूर मन मंग आप छोड़ बेंती करहो सासंग अगन सागर तरह हर तन के पर लेहो पंडार नानंगर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सासंग पाज परमानंद

सब आपे सचियार थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेवया तिन पाया मान नानक गावी है गुणी निदान गावी है सुनी है मन रखी है पाओ दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरुमुख नादं गुरुमुख वेदं गुरुमुख रहे आसमाई

गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीर्थ नावा जेत सुपावा विन पाने के नाय करी जेती सिरठ उपाई वेखा विन कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर मानक जेक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई।

ओंकारु असंख जप असंख पाव असंख पूजा असंख तापताओ असंख जप असंख पाव असंख पूजा असंख तापताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख

कह ना सकत के अचाल मूरत अनुभव प्रकाश अमित ओज कहिजै कोट इंद्र इंद्रान साहे सहान गनिजै तिरपहम हीप सुर नर असुर नेत नेत बान त्रेन कहत तवै सर्वनाम कथे कवन कर्म नाम भरनत सुमत पजांग प्रयात छंद

भूत है अशूत है, अलोक है अशोक है, कर्म है अपर्म है, अजीत है अपीत है, अबाह है अगाह है, अमान है निदान है, अनेक है फिर एक है, प्रियंग प्रयाशंद, नमो सर्वमाने स्वह तीन दाने, नमो देव देवे पेखिय पेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पहुणे, अनंगी अनाथे निरसंगी प्रमाथे, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत नृते, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी नामे संभति स्वरूपे प्रभंगी प्रमाथे सम

आद रूपे अनाद मूर्त जौन पुरख अपार सर्व मान त्रिमान देव अपेवादि उदार सर्व पालक सर्व का

थाप परम रूप पनीत मुहूर्त पूर्ण पुरुखे पार सर्व स्मृत्यो से अवगण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरुखे आदेश धर्म धाम सो परम रहत

नहीं वह चित मद परिशांत वे प्रसाद गुण गण उदार महिमा पार आसने पहुप मान आंगन पहु प्रकाश नेह दिन अनास अजान बाहु सहान साहू

पवित्राय परथि से अदि से अदरि से अकृसाय भगवती छंद तवाय प्रसाद कहते क्या छज देसाय क्या भिज भिसाय क्या गंज कर मैं क्या पंज भर मैं।

केसर बत्र भिहसै, केसर बत्र कालै, केसर बत्र पालै, केसर बत्र हमता, केसर बत्र गंता, केसर बत्र भेखी, केसर बत्र भेखी।

गनी मुलख राज है, निरुक्त स्वरूप है, त्रिमुक्त विभूत है, प्रभुक्त प्रभा है, सुजुगत सुधा है, सदैव स्वरूप है, अभेदी अनूप है, संभावत उपराज है, सदा सर्वसाज है, संभावतल सलाम है, सदैव काम है, निर्बाध स्वरूप है, अगाध है, अनूप है, ओं आद रूप है, अनाद स्वरूप है, अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभग त्रिवादे गंजे गादे शुभं सर्वभागे सो सर्वा अनुरागे त्रिभुक्त स्वरूप है, अछेज है, अछूत है, के नरकं प्रनाश है, पृथ्वी उल प्रवास है, निरुक्त प्रभा है, सदैव सदा है, विभुक्त स्वरूप है, परजुगत अनूप है,

निर्बाध विभूते अनंगी नामे त्रिपंगी त्रिकामे निर्पंगी स्वरूपे सर्वंगी रूपे न पुत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न कर्मं

हैं, जगतेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, काल कारण हैं, सर्वभूबारण हैं, तीर्थ के तरण हैं, जग के करण हैं, मन मान्य है, जग जान्य है, सर्वं पर हैं, सर्वं कार्य हैं, सर्वपास हैं, सर्वनाश हैं, करुणा कर हैं, विश्वंपर हैं, सर्वेश्वर हैं, जगतेश्वर हैं, ब्रह्मंड से हैं, कालखंड से हैं,

जुगाद स्वरूप स्वयं पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबारिया सिख संग्रह दुष्ट जिते उठवती उत्पाता सकल मिलेश करो रन काता

बचाई। कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दुखियन कवशय करता। श्री अतुज पहे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांसत फल पावे सोई दुख न तिसे बे आवत कोई अड़िल। सुने गुंग जो जाहे सुरसना पावई सुने मूड चितलाए चतुरताया वई दुख दर्द पौ निकट ना तन नर के रहे। हो जो जाकी एक बार चाओ पई को कह चाओ पई संबद सत्रह सहस पनी जय अर्ध सहस फुण तीन कही जय।

सुहिला सबद सुहावा सबदो सुहावा सदा सुहिला सतगुरु सुनाया एहो तिन कै मन वसया जिन तुरहो लिखियाया एक फिरे कनेरे करहे गल्ला गल्ली किने न पाया कह नानक शब्द सोहेला सात गुरु सुनाया पवित होए से जना जनी हर त्याया पवित होए गुरमुख जनी त्याया पवित माता पिता कुटाम सहत स्यों पवित संगत सुबाया कह दे पवित सुन दे पवित से पवित।

मैं संभाले आप छड सदा रहे पर ने गुर बिन अवर न जाने कोई कहे नानक सुनहो संत हो सो सिख सन्मुख हो।

परम सम्मान योग जुग जुग अटल चवर शतर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन गोद विच साजी निवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ आप सारे वडभागी हो तनता दे योग हो जो सतगुरां दी पावन गोद विच बैठ के सतगुरां दी पावन बाणी अमृतमई बाणी सरवण करके आत्मक आनंद माण रहे हो अपना ये मनुखा जन्म सफला कर रहे हो आओ अज जो अमृत वेले सतगुरां ने पावन हुक्मनामा बख्शिया उसकी विचार आपा कर सकीए। विचार आरंभ करन तो पहला सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज जो अमृत वेले सतगुरां ने पावन फुरमान बख्शिया ओ पावन शब्द तीजे पातशाह धन धन गुरु अमरदास साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन रचना तो उच्चारण किया होया राग वडहंस दे अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 583 584 उत्ते सुशोभित है। चार पदे इस शब्द दे हन

तुम दाती ठाकुर व्रत बाल नायक खसम हमारी निमख निमख तुम ही व्रत पाल।